नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहाय

मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशय हरा

तेरे दिखाई सत्य साई हे मचाई चाहिए तेरे बाबा सत्य बाबा प्रेम बाबा चाहिए।

0: सत्य
1: आनंद शांति धर्म आनंद सत्य साई प्रेम साई चाहिए फिर भी बाबा सत्य बाबा प्रेम बाबा चाहिए